0: एक तकटा एक दो तकटा एक दो तीन तकटा एक दो तीन चार बिश दो रुपए पी तो किन फील किन फो किन माजी का क्ले जय हुआ एक तकटा एक दो तकटा एक दो तीन बिश दो रुपए पी तो किन फील किन फो एक तकटा एक दो तकटा एक दो तीन तकटा एक दो तीन चार तकटा एक दो तीन चार पांच तकटा धा एक दो तीन चार पांच तकटा धा एक दो तीन चार पांच तकटा ऊका को ऊका को ऊका ऊका ऊका को ने तद दे के ता दे मिट के ता तम तकटा Get it, doesn't it? Get it, doesn't it? Get it, doesn't it? Get it, tunga, tata, the tunga, tata, the dugger, the kitta, tata, the dugger, the kitta, tata, the dugger, the tunga, ta, tunga, ta, taka, the kitta, tunga, the kitta, tata, the kitta, the dinner, taka, the kitta, tum, taka, the kitta, tum, taka, the kitta, tum,
1: chumbao, chihuahua, bawa,
2: popular one nose, popular one nose.
3: I don't wanna see you in my way. I don't wanna see you in my way. I don't wanna see you in my way.